एग्रो एन्ड अर्डर सप्लायर गुलेरिया रोड भुरीगाउँ बजार बर्दिया रोड राइटर सुनिता कुमारी साजी बम सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9861443492 र 9815978917।

0: Vergeet je niet, hè.
1: You can.
2: What happened?
0: I'm killing you. Exactly, Danny. आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ गाना था वो आया नहीं, बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट, वाह, मेरे शो में मेरा साथी बन गया, पर अब शायद इस वॉइस नोट में मेरे साथ